पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जांदा इतना परमात्मा नहीं पूजिया जांदा। पता है क्यों? जैन पत्थर पूजदे ने, बौद्ध पत्थर पूजदे ने, सनातन पत्थर पूजदा, ईसाई पत्थर पूजदे ने, भावे मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संगे अस्वत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहिंदे ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया, इब्राहिम नो प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ए पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पुछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है? सब कुछ खुदा तो आया, पत्थर भी खुदा तो आया। जद ईसाई कहिंदे ने ए हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्हां नूं इंज कहना चाहिदा है, हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इस नूं मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी कित्थों आए ने? फिर सारे उसे तो आए, सब उसे तो आए। कहण दा ढंग ईसाइयां नूं जो है नहीं आया। गुस्ताखी जो है माफ, जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जद प्रगट होया संसार दे पहले पत्थर दे रूप। हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव इको ही है। परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगदी, पत्थर नूं भी नहीं लगदी। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नूं हजारां गालां कड्डो क्रोधी नहीं आउंदा, ते सारा दिन सजदा करी जाओ, उपमा करो करी जाओ, कोई फुल नहीं जांदा। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा ना होवे घाट ना जाए, सारा दिन पत्थर देखो मथा रगड़ो, वो कोई फुल नहीं जांदा। ते सारा दिन उस गालां कड्डो, वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठदा। पत्थर दा स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है। फर्क सिर्फ इतना है, पत्थर टोटली सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जा गया है, पूर्ण तौर ते चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा, ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति, प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर ना समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करदे ने। संस्कृत दा शब्द है प्रकृत, प्रकृति, कृत तो पहले परमात्मा। इथे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले उते परमात्मा है, उते करता है। पर कृति उसका नियम, सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी ही बना, जिस शकल दे प्रगट कीता बनस्पति, ए दूजा पड़ाव सी, पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नो थोड़ी जिया प्यास लगती है, पानी चाहिए, क्यों? जागी है। पत्थर ते टोटली सुत्ता होया सी, जागे दियां लोड़ा आउंदियां, सुत्ते दियां लोड़ा नहीं आउंदियां। बनस्पति दी लोड़, पानी चाहिए, प्यास पैदा हो गई। हजारा लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शकल विच प्रगट होई, वो है पशु ते पक्षी। हुण निरे प्यास नहीं, भुख भी लगती है। निरे पानी नाल शेर नूं नहीं जवाया जा सकदा, मांस भी चाहिए। निरा पानी नाल गऊ नूं नहीं जवाया जा सकदा, घास भी चाहिए। प्यास भी लगती है, भुख भी, आवाज भी आ गई, पशुआं कोल आवाज भी आ गई। लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहे हैं, ये पशु जिस शकल ने प्रगट हुए ने, इन्हों कहिंदे ने मनुख। इहदा मन पशु नालों ज्यादा विकसित हो गया है, बनस्पति नालों ज्यादा जागे है, इहदियां लोड़ां भी ज्यादा ने, जागे जो ज्यादा है। पशु नालों इहदियां लोड़ां ज्यादा ने, पशु दी समाजिक जिंदगी नहीं है, पशु दी राजनीतिक जिंदगी नहीं है, पशु दी धार्मिक जिंदगी नहीं है, मनुख दी है। ज्यादा जागे, ज्यादा जागे, इहदियां समस्यावां भी ज्यादा ने। और इंज कह दईए, सारे पशु सुखी ने, दुख दे केवल मनुख जी रहे, क्योंकि ज्यादा जा गया, इनू असलियत का थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया। पर जिवें बनस्पति ते पत्थर रस्ते दे चने, पशु भी रस्ते दे चने, मनुख भी अजे रस्ते दे चे।

इन ते आप छुड़ावो, एहे पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो, अपनी भेद

0: सचिदानंद राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पुरख दाता रे नानक गुर सेवा की न लभ्यते। किन न लभ्यते, केड़ी चीज है जेडी गुरु की सेवा विचो नहीं लभदी। फिर एक राजा सामने आ जाए ते एक झाड़ू लाण वाला महापुरख, क्योंकि शब्द नहीं कहने, मैनू पता है बाबा सतनाम सिंह जी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, पर इहदे च कोई शक नहीं। बाबा हरबंस सिंह जी एक दिन आए घर, ग्रह चरण पाए उन्होंने कार सेवा वाले, दरबार साहब की परिक्रमा की गल चली, वो भी बैराग च, क्योंकि नाम रसिक जितने भी ने ना, बस यू समझो जे गुरु की दे अमृत नाल भिजीए तो नेड़े रहन वाले सुके रह जाएंगे। गुर अमृत भिन्नी देहुरी, ते कल्ली भिजी नहीं, साड़ी कपड़े भिजे होण तां कपड़े नुचड़ के पानी थले नूं जांदा है, ते गुरु इहो जिहा पुज्जा जिहदे शरीर विचों फुहारे निकलदे ने, थले नहीं पानी नुचड़दा। केवल गुर अमृत भिन्नी देहुरी, अमृत बुरके राम राजे, जिन्हां गुरबाणी मन भाइया अमृत छक छके। कह लगे दरबार साहब की परिक्रमा की गल चली, बाबा गुरमुख सिंह बाबा बीरमदास की सेवा की उन्हें, कह लगे बाबा जीवन सिंह जी नूं के दरबार साहब की परिक्रमा चो एक डिग्गा होया कख एक पत्ता भी कोई
1: बात। You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी, दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए, हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है, महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन, केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी, ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

मंदिर दे जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने, नहीं जितनिया मस्जिद ने जितने मंदिर ने जितने गुरुद्वारे ने जितने जैन मंदिर ने जितने बौद्ध मठ ने जितने सनातन मंदिर ने जितने चर्च ने जितने सिनेमागॉग ने नए धार्मिक मंदिर और हर शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माह है होंदा ते है चंदन दा बूटा पर हर जगह नहीं आउंदा हर जंगल दे च नहीं आउंदा। होंदा ते है केसर पर हर जगह नहीं आउंदा। सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है कश्मीर दे च आउंदा है एक अद मुलक होर बाकी किधरे नहीं आउंदा। बड़ा बोके वेखिया गया है नहीं आउंदा। इधर हिमाचल दे च भी बोके देखिया गया है नहीं होया। कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देखिया गया है नहीं होया। बीच के देखिया गया है नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नूं जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश उत्थे आउंदा है और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत होंदे ते ने धार्मिक मनुख गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर हर जगह नहीं आउंदा। होंदा ते है चंदन हर जगह नहीं आउंदा। होंदे ते ने हीरे पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत हर शहर दे च नहीं आउंदे। हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने साइंटिस्ट होंदे ने हर शहर दे च धनवान होंदे ने कारोबारी होंदे ने व्यापारी होंदे ने हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने हर शहर दे च संत नहीं होंदा भगत नहीं होंदा। हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने दार्शनिक फिलासफर होंदे ने हर शहर दे च कलाकार होंदे ने हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने व्यापारी होंदे ने चोटी दे धनवान होंदे ने हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिए धर्म नूं समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक बड़ी मेहनत है मानसिक जिन्ने नाम दयाया गए मशक्कत गाल बड़ी घालना है बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ हो गए कोई धर्म की समझ रखता होवे ऐसा सिलसिला बहुत घट आंदा बहुत घट आंदा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहिए प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं फिर इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं पर कंठ तक गल आ गई है मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा। हुण होर भी मैनूं कहण लेना बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं आउंदे नहीं आउंदे बहुत सारिया धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने धार्मिक क्रिया धार्मिक नहीं है। कारण जद प्रभु दी समझ नहीं

साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक देवैया, दानव देव निंदन साचर, भूत भविख पवहान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुहन पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जाग, सत्र सबै अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नादप जाउन त्रिलोक राज करेंगे, कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बेसन सती पात अंत फसे

जब उदकारख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकारख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब धार आपे अपनी भूज उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जान तु बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबका निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पहेव न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव काओ कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है देती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहो राव कह भूपा अंडज जेरज सेत किन्नी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पहो संकर एक कैठा सिगरी सृष्ट दखाय चम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जेते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे आस तुज तब सरणी परे तनके दुष्ट दुखत हो वै मरे पुरख जावन पाग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शुव सकै ना कोई

दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दे ले हो यो बारी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्रीयास्तुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशित फल पावे सोई दुख न तसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई सुनै मूल चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द।

करना, अंगीकार वो हो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम दिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कहर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, दिन भुखा सब गवाइया कार सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो, जिस दी आए वडियाईया कह नानक सुनो संता हो सब धरहु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया, तुहर कर्म पाया तुद जिन का उसे नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बेना देह न माणी देह न माणी लिवै बज हो, क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया, एस नौ होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लेवै बज हो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिन का मोह टुटा तनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया।

अकथ की करहै कहानी अकथ केरी कित नुवारै पाईऐ। तन मन धन सब साप गुर का हुक्म मन्ने पाईऐ, हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गा।

पौड़ी बिनु सतगुर किन न पायो, बिनु सतगुर किन न पाया। सतगुर चा ब्रखन कर प्रगटक सुनाया, सतगुर मिलया सदा मुक्त है जिन्हें मोह चुकाया। उत्तम है विचार है जिन्हें सच्चे से।

पौड़ी सतगुरु विट वारे जित मलेख समसमालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दी ने नेत्र जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सिवन जा रहा सतगुरु बोझ थैवर लकने विचारिया।

लगे आप उग श्री प्रसाद संगत विच वरते जो जी शके आप जी का अमृत नाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपे सुभाए मन मुखार बिन्त मुख वाग दी दात बख्शिश करके निहाल करतार्थ करो जी।

मेरा गुण अवगुण न विचारहु कोई, मट्टी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गति ही। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते नाकाम मिलसाद संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझ दे चाह जांदा है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू थे सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद कर लग पैंदा है। जिन्ने चिर तक साडी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहगुरु वाहगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। क्या समझ दे च आ जांदा है? नहीं। समझ समझ के ए समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी ऑटोबायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहिंदा है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानना, सब कुछ जानना, तुसी कुछ भी पुछो ते मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी, बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहिंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ए कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, नहीं जानदा, सारे सवालां दा जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानदा। कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहिंदा कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं जान जान के ए जाने है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जानया, जानन हार न जान छाना रे। ओही महामूरख है जेड़ा कहिंदा मैं सब कुछ जान रे, खाक जानेगा? ज्ञान दा ते सागर पिया है बार, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे चो एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों? जद मनुख इंद्रिया तो उच्चा उठदा, उनू इंद्रजीत कहिंदे ने, इने जीत लिया इंद्रिया नू। नास्तिक कहिंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नू कोई होर इंद्रिया ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कोई सुन के, कोई चख के रस मिलेगा, कुछ स्पर्श करके, कुछ सुंघ के, होर भी कोई रस है। ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्रिया ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक इस संबंध च, बहुत कुछ कहिंदे ने। इस वास्ते ऐलानिया कहिंदे पाणी दी लोड़ है गुरबाणी दी नहीं, धन दी लोड़ है धर्म दी नहीं, पदार्थां दी लोड़ है परमात्मा दी नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकदे हां। पाणी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकदे हां। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकदे हां, इंज कहिंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने पाणी ना मिलिया शरीर मरेगा। वाकई शरीर दा जीवना बड़ा औखा होगा, पर गुरबाणी नाल मन ना जुड़िया, सुरत ना जुड़ी,

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखां नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही हुंदे ने। ये किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी किथे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी पहली श्रेणी इसनूं वो इस तरह बयान कर देना। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लैण वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करदा रहा, चोला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते हंकार भी मर जाए, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार नहीं मरदा। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होंदी। शरीर बिरद हो जाता है, लोभ बिरद नहीं आता। लोभ सदा जवान लैंदा है, अहंकार सदा जवान रहिंदा है, विकार सदा जवान रहिंदा है, वासना सदा जवान रहिंदी है। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरद हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरद हो गया, वासना ते बिरद होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरद हो गया, हंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा दे, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जांदा है, वासना नहीं मरदी। शरीर मर जांदा है, लोभ नहीं मरदा। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उच्चारण कीते आसा दीवार दे श्लोक दा इंज खुलासा करदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नूं समझदा है कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी। वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं है, इन्हों कहते हैं जीवन मुक्त। हंकार पे मर गया है, तन अजय जिंदा है, इन्हों कहते ने जीवदिया जी मुकत है मुकत। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टूट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आंदा, लोभ दा बंधन आंदा, वासना दा बंधन आंदा, सब तोड़ देते हैं, सब टूट गए।

0: अहंकार दिच तृष्णा दिच वासना दिच लोभ दिच तरस वस आ गया है, परोपकार की खातर आ गए ने। कुछ असी जाने है जनाई है, कुछ साडे कोल है वंडी है। रविंद्र नाथ टैगोर कहते ने अवतारा ने जो वंडना चाहिया संसार ने लिया नहीं, ते आम संसारक मनुख जो छुपाना चाहते ने उस संसार ने खोण की कोशिश की। धन ते हर एक दा दूजा खोना चाहता है, धर्म परम पुरख वंडन भी आते कोई लेना नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता, मुफ्त च वंड देना। कबीर ते कहने मुफ्त की लुट पई है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जिन्ना लुटना ही लुट ले। किसे दा धन लुटिए लुटेरे कहलावांगे, किसे दा धन लुटिए पकड़े जावांगे, जेल पौगांगे, सजा मिलेगी। पर परमात्मा दा खजाना उदे नाम दा खजाना लुटिए परमात्मा दे दरबार विच ही वड्डे तो वड्डा सिंघासन मिलेगा, सन्मान मिलेगा। राम नाम की लूट है, जितना लुटना ही लुट लै, कोई रोकेगा नहीं। खजाना खुला पे है, सरेआम पे है, लुटेरे कोई नहीं, लुटन वाले कोई नहीं। जिहड़े लुट लैंदे ने उन्हां नूं ही संत कहिंदे ने, भगत कहिंदे ने, उन्हां नूं महापुरुष आखिया जांदा। खूब लुटिया उन्हां ने, रज के लुटिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये पहली श्रेणी अवतारी पुरुष परोपकार की खातर आ गए ने, वासना करके नहीं आए। हंकार इन्हों फिर जन्म नहीं दे रहा, हौमें एहा जात है, हौमें कर्म कमाए, हौमें एही बंधना फिर फिर जो नहीं पाए। ये बार बार जन्मे ने हंकार करके नहीं, लोभ करके नहीं, वासना करके नहीं। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए, मरम को पाए। ये वासना करके नहीं आए, ये हंकार करके नहीं आए, ये लोभ करके नहीं आए, पर उपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा मन का एक बहुत छोटा जिहा भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसू। बिरथा कहो कवन स्यो मन की, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन की हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है धर्म दी नहीं है, आसा पदार्थां दी है परमात्मा दी नहीं है, आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लागे धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवा, कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना कितना धनवान है, ब जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮੰਨ ਕੇ, ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸਹੋਂ ਦਿਸ ਦਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾ ਗਿਓ ਧਨ ਕੇ, ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਣ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਤ। ਐਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਵਤ, ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ, ਕੁਮਤ ਬਿਨਾ ਸੇ ਤਨ ਕੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਬਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਰਲ ਬਾਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਖੂਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਸ ਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ? ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਪੇਟ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਤਪ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁਨਚੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇਓ ਉਧਾਰ। ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਕਿਧਰੇ ਪਾਠ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਜਪ ਤਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣਗੇ? ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਉਦ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਖੈਰ ਮਿਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਦਾ, ਅਸਥੂਲ ਤਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਸਿਰਫ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, वासना वस होके नहीं, परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए ते मैं ये अर्ज करा। सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरों तो इलावा कुछ होर भी आते ने, देवत्या दे, ओतां ते प्रेतां दे, उन्हां कोल भी तन का बंधन नहीं होवे आंदा, जिथे चन जा सकते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहते हैं जिथे रामायण की कथा होवे उथे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहिंज ना आख्या करो, अगर ये कहिंदे हो कि हनुमान मुकत नहीं होया, अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकते हैं, भूत प्रेत भी भटकते हैं। इंज आख जिमें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान दी तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण दी कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां होंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां होंदियां ने जो मुक्त नहीं होईयां। जैसे 100 मील की वाट होवे ते कोई 90 मील चले है ते शरीर का अंत हो गया, शरीर की उम्र इतनी सी, 10 मील की वाट ते रह गई, वह तो तय करनी है ते उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वह हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है तिन धन जने दी माओ आए सफल, क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है विकसित मन नहीं है, देवते कोल सिर्फ मन है तन नहीं है, मनुख कोल तन भी है मन भी है। आप सारे सियाने बैठे हो, बुनियादी गल नूं पकड़ना, पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ये तन भी है मन भी है। मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी, परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा, ना भूत प्रेत नू ना देवते नू। इस वास्ते गुरबाणी कहिंदी इस देही को सिमरे दे, देवते भी कहिंदे ने देही मिले ते मुक्त होई है। 10 मील दी जिहड़ी वाट रहिंदी है पूरी करिए, पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहीदी है। पहले चुनाव मां का, क्योंकि मां के गर्भ में उसने प्रवेश करना, मां बाप की वासना, इस दी जन्म की वासना, ये तिना का संगम बन के इसका जन्म होगा। जैसे गुलाब का बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नू जन्म जनी खनी मां नहीं कर सकते, देवते नूं जन्म देने वास्ते कोई खास मां। इसनों मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकते। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है। मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने, वो कहने प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर प्रभु दा नाम सुने अश्क बार हो जाए बिरही हिरदा रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद की खातर रो रहा है, कोई कारोबार की खातर रो रहा है, कोई परिवार की खातर रो रहा है, कदी कदाई कोई मिलता है रोंदा होया निरंकार की खातर कदी कदा। प्रेम सुनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भलीस बिंस लहू सो घाव चले अरधंगा। ऐसा सूर बीर पैदा कर रणभूमि दे च रोम रोम उसका जख्मी होवे पिठ फिर भी ना दिखावे अणख उसकी बनी रहे। ते जे ए भी नहीं ते विद दोए भूत जने जननी जन और सवे सुत कीट पतंगा, ते फिर कीड़े मकोड़िया जन्म देने नाल की होना, धरती का बोझ ही बधाएगी और की। कहन देना अजोकी औलाद, जद मैं सुनदा पांच दस मुंडिया ने एक मुंडे नू रेल तो गिरा दिता मासूम नू, पांच दस बच्चियों की इज्जत लुटन की कोशिश की थी बिहार दे नौजवानों ने छोटे छोटे बच्चों ने, तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने मनुख ने। इन्ने गंदियां आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईयां ने, यह भी मैं जिक्रां। एवें नहीं एशिया दे बैड़े पुत नू वेख के मां नू गाल कढ़ दे, मां नू गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ऐसी भैड़ी आत्मा नू जन्म दिता, तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुक्त सरस का गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है, जिदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा। जिन हर हिरदे नाम ना वसियो तिन मात कीजे हर बांझा तिन सुन्ये दे फिरे बिन नावे ओ खप खप मोए करांजा। अवतारा नू जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ां च कोई एक आउंदा है, अवतार नू जन्म देने वाली मां भी कोई करोड़ां च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से, इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसी परम पुरुख नू उड़ीक ली है। खैर ये स्वतंत्र आउंदे ने मुक्त रूहां, चूंकि धर्म का मूल ते दया है संतुष्टि है। इन आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है दया है। एक दफा मैं फिर दौड़ा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए, पशु कोल तन है विकसित मन नहीं है, देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है तन नहीं है। इंज कह ले उदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है फुरतील है, पर उदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं वाहन ही नहीं है। इंज कह ले केवल मनुख है, इदे कोल तन भी है इदे कोल मन भी है। इस तन दी बड़ी महिमा है, बड़े भाग मानुक तन पावा भई परापत मानुक दे होरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ए मन तू गोविंद तक पहुंच सकता है, ये देही इतनी महान है। इस देही को सिमरे देव देवते तरस देने, देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखां नू देखण दी दृष्टि है, किसी को नहीं आउंदी विचारे कोल जिन्हों असीं नेत्रहीण अंधा कह देंदे हां, कोई कद दृष्टि साडे कोल है मनुखां नू वेखण दी। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਤਕਥਨੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੇਗੀ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਦੇਵਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇਵਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਖਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਛ ਦੇਵ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਹਿਰ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਸਭ ਮਹਿਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ, ਬੜਾ ਕਸਾਈ, ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਮਹਾਨ ਠੱਗ, ਬੜਾ ਕਾਤਲ, ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਚ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਚ, ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਚ, ਹੋਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ 2-4 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ 700-800 ਸਾਧੂ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 25-30 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਸਕੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਤਨੀ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। इतने को माया ने की करे, शर्मसार निकल गया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे तो संभाल, मैनू नहीं पता, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। शामा पै गई हूं, सोचता जावा घर, पता नहीं उन्हें पंजियां नू भी मिले है कि नहीं, जिन्हां नू मैं कहा सी बेइज्जती खूब हुई होवेगी, मेरा मजाक अज खूब उड़ाया होना है कई ने। ज्यों आया ते घर दे बाहर पतलां दा ढेर, इंज लग्या जिवें बहुत सारे भोजन छक गए। होर नेड़े आए ते दो सज्जन लंघदे हुए कहिंदे ने, धन कबीर धन कबीर, ऐसा लंगर सारिआं नूं दक्षिणा भी दित्तियां, धोतियां भी दित्तियां, दो दो मोरां सोने दियां भी दित्तियां, धन कबीर धन कबीर। कहिंदे निकल गए, घर पहुंचे, प्रसन्न चित मां मिली, प्रसन्न चित लोई मिली पत्नी, ऐ सब कुछ देख के जो कबीर ने कहा, ना हम कर किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, मेरी तौफीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। श्लोक है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये क्या जानो किच हर किया भयो कबीर कबीर। पता नहीं रब ने की कर छड़िया, कही जाते ने धन कबीर धन कबीर धन कबीर, अपनी ते बिसात नहीं सी। एक दफा नेक इरादा बना लईए, बहुत नेक रूहां मदद करन नूं तैयार ने, एक दफा भैड़ा इरादा बना लईए, बहुत सारे भूत प्रेत नाल लगन नूं तैयार ने। ते अक्सर भूत प्रेतां दा वासा किथे हुंदा है, वी कबीर कोल सुन लो, जे घर साधन सेविए हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे ते नमाए। भगत कबीर, खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये मुक्त लोग जो पूर्ण मुक्त ने, ब्रह्म विच लीन हो चुके ने, ते फिर जगत विच आ जांदे ने, अवतार कहलांदे ने, गुरु कहलांदे ने, पैगंबर करांदे ने, मनुखता दे पहली श्रेणी इन्हां दी है। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਨਰਗਿਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨੂਰੀ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਮਨ ਮੇ ਦੀਦਾਵਰ ਪੈਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ। इस तरह दी आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने, गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुल्लां दा जन्म कदी कदा, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस हो के जन्म नहीं लैंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा, हंकार वस हो के जन्म नहीं लैंदे, हंकार ते इन्हां दा मर गया, वशना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया, शरीर दे होंदे आए सब कुछ मर गया सी, ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म विच। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया, ये दया वस हो के आ जांदे, तरस खा जांदे, जगत नूं जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दीआं ठोकरां खांदिआं देख के, तरस खा के फिर आ जांदे ने। तन दी अपनी उम्र आउंदी है जिहड़ा मिलदा है उहनां नूं, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नूं दस तनां दा दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पिआ। संत बनाना है उसे संत नूं सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए, मनुख नूं पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल दी अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के साधना कर करके अमृत वेले उठ के सवेरे शाम सत्संग करके हर वक्त मन नू प्रभु पासे ला के इसे जीवन विच मुक्ति पा ली है। इन्हां नू कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नू कहिंदे ने मुकते हो गए सन फिर आ गए। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए होवेगी। साधना कर करके जब तप कर करके मुक्त हो गए ने पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने पर ये दोबारा आनगे के नहीं आनगे इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने संत ने परम आनंद देच ने गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी भगत जो भगवान तक पहुंच गए प्रभु तक पहुंच गए ये मुकुत ने भगत ने संत ने सुरनर तिनकी बाणी गावे कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जाता है तो उहदे अंदरों भगवान का गीत संगीत निकलता है भागवत गीता निकलती है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने ये भी महज करते हैं गीत ने नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत केड़े गीत जो भगतां दे गीत ने अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने उन्हां दे बोल ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਚੌਕ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗਣਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਛਿੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭਗਤ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ किधरे पहुंचेगा। मेरिया इन अखा ने देखिया 40-40 साल तो जेडे गुरुद्वारे आ रहे ने 40 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 40 साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन, अज भी लोभ नाल भरे। 40 साल पहले भी हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। 40 साल पहले भी भिकारी सन, अज भी भिकारी ने। कुछ भी चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं? एक कदम अग्गे एक कदम पीछे, एक कदम अग्गे एक कदम पीछे। दान पुन भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोले, हाथ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप लिया, श्रद्धा भी है, शक भी है, एक कदम अग्गे एक कदम पीछे। ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा है। तो इस तादाद दे चां कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन, मौलवी बन गया, कोई फादर बन गया, कोई गुणी ज्ञानी बन गया, कोई पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जाणन दी कोशिश पे करदे, समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पे करदे, खुद नहीं समझिया। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया, उही जगत नूं मनाना चाहुंदे ने। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है, श्रद्धा भी है, शक भी है, शक भी है, श्रद्धा भी है, इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जप तप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है, शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ऐ नहीं। ऐलानिया कहिंदे ने कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब। अजोके नौजवान कई मिलदे ने, मैं ते सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाण दी? जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणियां दी खेड है। दिन रात साधन करन वाले विचारे अपने मन नूं शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए जी, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तों गल स्पष्ट हो गई, अजे इन्हां विचारियां नूं मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता। अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां दी चिंता है, अजे इन्हां नूं मन का कुछ भी नहीं पता। जो इस तरह कह रहे हैं, जद कदी मन नूं देखणगे ते पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे च ने, चिंता ते मन दे च, भय ते मन दे च, विरोध ते मन दे च, प्रबल वासना ते मन दे च, प्रबल अहंकार ते मन दे च। ये मन मनुख कोल बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं, साड़ा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, ये भी मैं। और कम्युनिस्ट कहते ने, पता है की आखते हैं, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नूं की करना है, कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं। और दलील देंदे ने, चार दिन पानी ना मिलिया, पंजवें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है? कुछ भी नहीं घटता, इंज कहते। जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते चार कदम चलना औखा है, हिरदे दे च धर्म नहीं है सारी दुनिया भरमण करके आ जाओ, इंज कहते। पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है, जबान ने भजन नहीं किया, की घट गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावा ना समा हो गया, मैं अर्ज करा, भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन नाम की ता जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा ते सही जीवदा ते रहेगा, पशुआं दी तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलेगा तन मरेगा, वाह कई मरेगा। गुरबाणी दा जाप ना कीता मनुखता मर जाएगी। आखां जीवां बिसरे मर, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नूं भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई सुखी हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उस नूं चंबणगे। परमेश्वर ते उन्या व्यापन सबेर। एक चौथी श्रेणी, लोड़ ही नहीं है, नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी, इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इते कोई ऐसा विषय ही नहीं है। पंजवी श्रेणी जिन्होंने भूल के कदी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कदी ख्याल भी नहीं आया। ये पंज श्रेणियां हैं। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है, असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी केरी क्लास दे विद्यार्थी, किस क्लास ने, चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है। दूजा की जाने, थानू की पता मेरा मन दे च की चलता रहिंदा, मैनू की पता थोड़े मन दे च की चलता रहिंदा। तो खुद ब मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बनना, अपना फैसला आप करना, साहब रहमत करन। असी इस दूजी श्रेणी च आईए, धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों नूं अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव नूं मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशां होईआं, ए गुरु हर राय साहब अज साडियां भी झोलियां भरना, तेरे दर तो खाली ना जाइए। श्रद्धा नाल भर जाए साडी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साडी तौली। जो शक शुबे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इस नूं कढो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाकी विचारां मैं थोड़े सामने अज शाम नूं रखांगा। ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए, मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बनेगा, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। भगत मुक्त हो जाता है, एक दिन तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है, मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुक्त है। कि जो मुक्त है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी, और ये भटकेगा, अहंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर जो नहीं पाए, मुड़ मुड़ जोनिया दे भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभु की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे। असी जीवन मुक्त बन के जीवन दा लाहा खट सकीए, जीवन नु आनंदित बना सकीए, संसार दे आण दा मनोरथ जो है वह प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान, सारिआं दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा, वाहिगुरु,
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Goodale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Goodale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at goodalebaudgroup.com.

0: जे किसे कर न्याणा होवे कदी किसे क्या भी बधाई होवे तुहाडे कर कल भाणा वापर गया तुहाडे कर न्याणा होया भाणा वापर गया क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया गुरु ने पहलियां पौड़ियां च कहा नहीं हो सिखा हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है ये सुख भी है ते इहदे विच दुख भी है फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई करे सो चंगा मन में बेनती करे हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए मेरी बेनती तुसीं सारिआं पौड़ी नाल पढ़ी पर ध्यान दिया जी अर्थां वल हुक्म विच ही वडियाई है हुक्म विच ही अपमान है हुक्म विच ही मौत है हुक्म विच ही जन्म है हुक्म विच ही सुख है हुक्म विच ही दुख है पर इस हुक्म दी समझ तां पैंदी जदन बंदे दी ईगो मरेगी क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी ईगो कहिंदी मैं करन वाला फिर पौड़ी पढ़ लिये हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोय नानक हुक्म जे बुझे ता खौमे कहे ना कोय ओ खौमे च नहीं कहिंदा मैं फिर बेनती करांगा जी इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इस ते देना है के करे चो सो चंगा मान दुई गणत लाखे जो कर रहा बस उन स्वीकार कर ले अक्सर असी जदो ए मैं हुण भाणा शब्द वरते है ते ए आनंद साहिब च रोज पढ़ने जी जां तिस भाणा तां जम्मिया भाणा वापरिया ते बंदे दा जन्म होया परिवार भला पाया एक असी घटना अक्सर सुनाने आ भाई भिखारी जी दी मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां चो करनिया ने के तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा मेनु मन्ना गा अगे असि बाणी चो देखांगे क्योंकि जो गुरु जी दी तां बाणी दे प्रमाण लई दे ने मता कोई सोचे शायद अपने कोलो हुण असी जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने आ भाई भिखारी बारे ते जेड़ा सिख इनु मिलन गया ओदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख बच्चे दा विआह सी आप सब नू पता है भी जवान पुत्र दा विआह कर इना खुशियां खेड़े पर भाई भिखारी जी जेड़े ने ओह तप्पड़ सींदे पए सन ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई ओही मर गया ते वापस आए ते भाई भिखारी जी अज कल जिस बच्चे दे व्याह विच इन्ने साजो समान घर कट्ठा करी बैठे सन ते अज तप्पड़ विछा के उस बच्चे दी मंजी दे कोल बैठ के ओह बंदगी कर लग पए उत्थे उहनां नूं पुछया गया भी जे तुहानूं पता सी संस्कार तो बाद ते तुसी ए गल कल क्यों ना कीती तुसी भेद क्यों ना खोलिया ओ कहन लगे सिक्खी विच जिस बंदे ने मुक्त होना तीन गल्लां चेते रखे ए तीन लफज उत्थे भी ने तां ते भो गुरमुख सुन लीजै ए भाई गुरमुख मेरी गल सुन भाणा मानन मन थिर कीजै भाणा मनन वास्ते मन नूं अडोल बना किवें जिवें उस्ताद अपने विद्यार्थी नूं साल दो साल पांच साल दस साल वी साल पढ़ांदा है ते वी पच्ची साल बाद फिर वह परचा पा के कहिंदा है वह सवाल पांदा है परचे पांदा है कहन लगे वी साल की तैयारी एक दिन दे परचे पता लग जांदा है कई बारी किन्ने किन्ने साल कीती हुई बंदगी एहो जी घटना वापरदी मौत ते दुख बन के उस बंदगी का परचा पै जांदा है कहने भाई याद रखी तैयारी हुण आप मेरे वर्गा ते कह देना कोई नहीं गुरु परचे पांदा पे प्यारे हो परचा भी तो ओहदा पैंदा जिहड़ा पढ़िया जिहड़ा पढ़ी कोई नहीं ओहदा परचा की इत्थे भाई साहब कहने ता ते पो गुरमुख सुन लीजै भाणा मानन मन थिर कीजै सत नाम को सिमरन करनो तन हंता को हृदय विसरनो एक शरीर दा मोह छड़ दे दूजा सिमरन कर तीसरा भाणा मनन वास्ते तैयार रहा कर मुक्ति के मार्ग तीन कह गुरु अर संत पर भी मैं अर्ज करांगा जी करे सो चंगा मान जो करदा चंगा मन ले जे नहीं मनांगे मैं क्या एक तरीका संघर्ष दा मैं नहीं मानदा मैं आ नहीं मानदा ओ प्यारे हो बंदे दी हस्ती की है जी मान लो जे आपां गुरु सामने जा किसे वाहेगुरु सामने कही जी नहीं मानदे मेरे गुरु साहिब तां कहिंदे ने कीता करना सर्व रजाई किच कीचै जे कर सकी है साडे कोल की ताकत असी कुछ कर सकी ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਚ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਚੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖੀਏ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਰ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਣੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਬਖਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਬਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਜਾ ਤੀਸਰਾ ਤਸਲੀਮ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ
1: ਸੰਤਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸੰਤਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾ ਅਸਤ ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੰਤਪਣ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ ਫਕੀਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾਸਤ ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सके उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म किथे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली विच कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे च। करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे हुंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई, उसकी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कट्ठी हुंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा यह जिक्र नहीं कदो जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसे दा मरना इतना महान आउंदा है कि कलम दे धनिया नो, दिमाग दे धनिया नो, उन्हां दे ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण आउंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया, लेकिन जीवन महान होंदा, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जांदी है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे च हजारां साल उड़ीक करण तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लेंदी है जिदा जन्म भी क्रांति करदा है, जिदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, तें जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनिया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो ही जुड़े हो, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासिक सबूत मिलता है, 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आती, महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हो आए माता भाने जी, और डांट दे लहजे आख्या सतगुरां दा सिंघासन है,

ने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए।